0: मेरी माँ ने मेरे को कैलकुलेटर दिया था। आ कोई एमी जे कैलकुलेटर नहीं सीखा, आ टेक्सस इंस्ट्रूमेंट साइंटिफिक कैलकुलेटर सीखा, बड़ी प्रोफेशनल थी। मैं दो तीन महीने वास्ते मंगता सीखा, चंगी तरह माँ ने तंग करता, माँ ने पता सीखा, मेरी आदत नहीं चीजा मंगने। जो तो माँ ने मेरे इतना बड़ा तोहफा दिया कैलकुलेटर, मैं फटाफट जाके उन्हें चप्पी मारी, पता उन्हें की किता, और वापस मैंने चप्पी मारी। हमेशा मैं सोचता सी मेरी माँ मुझे प्यार नहीं करती, मेरिया छोटिया पैरों ने हमेशा चप्पियां मार रही थी, पर मैनू नहीं।
1: I told my girl I was on radiation.
2: मेरी कुड़ी, ओदी सेहत ठीक नहीं, अद्धी रात मिनी स्कर्ट पाके क्लबां च चीका मार के टपदी आ।
3: कोई ना वीरा, असी डिजायर्ड इफेक्ट नू सदूंगे।
4: उपड़ वाले का ना जप्पो, किसी ने मैनु बुलाया, 500 पाउंड मैनु दान कर लो, नाल सारे तेरे दुख दूर हो जाऊंगे। तेरी पार्टी हार्ड कुड़ी दा कमरा किथे आ?
2: इत्थे आ उपड़, 10 दिन च एक रोटी दी बुड़की खाई नहीं, बस बर्गर चिप्स चबी जांदी आ।
4: अच्छा, इनिशियल डायग्नोसिस, शक्ल इज रादर पैड़ी एंड टॉप लिप वेरी हैरी। 2000 पाउंड दान कर लो, मेरे नाल जप्पो।
5: द पावर ऑफ रेडिएशन कंपेल्स यू, रैंडम गाइस ऑफ सोहो रोड कंपेल यू, Pearly uncles with x-ray glasses compel you to leave this girl's forsaken body, so she's free to dress sensibly and dance to proper music on
6: Radiation, the number one station for the Bagel Asian.
7: Good afternoon, everyone. Have any of you ever like taken time out to watch a new Conjuring film? So I thought about it, for you want to see real life Conjuring gear, walk around Wolverhampton City Centre, see proper conjurers in action, and you can learn. So be careful with your wives, sisters, and the rest of that, your partners out there, because you have some conjured sort of people approaching them, which is not kind of cool. Should you want to send over any tracks to the show, what is going on with my voice? I should be like, hopefully it's kind of like sounding okay, but I'm just testing things. I will be configuring things as I'm going along and tweaking things, but I will kick off the show with the first track here. But oh, that sounds a bit more hello darling, are you well? This track over here is by Sahara. It's called Sornie Any Sornie from Access All Areas, going back to, is it the 1990s, is it 2001? So basically done straight away already on the show, so let's do it.
6: Radiation, the number one station for the Bagel Asian.
8: RDB Remix Sahara, Access All Areas.